0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित आकाशवाणी मुंबईचीही आहे अस्मिता वाहिनी. सकाळचे 6 वाजत आले आहेत. ठीक 6 वाजता
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है. पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे. ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है. मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी. प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे. श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे. योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे. भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे. अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी. इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी. ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी. सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे. ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है. असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है. इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है. इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है. इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा. ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है. फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया. इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया. बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई. ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया. फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है. विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है. उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा. इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं. वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 6:05 झालेत। ऐकूया भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। सुरुवातीला ऐकूया श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र वैभवी शेटे यांच्या स्वरात।

0: स्थिति ही सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तर प्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 7 वाजलेत, आता वेळ झाली आहे ऐसी अक्षर रसिके या कार्यक्रमाची।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6-8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
1: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
5: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्क नेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
6: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
8: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गई। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
11: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shundip Andashgupta, Jakarta, Indonesia.
10: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the UNCTAD, United Nations Trade and Development, will continue till Wednesday.
4: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the 3-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
10: India will host a 2-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship, beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus to advance women-led development. The BRICS heads of anti-drug agencies meeting will begin today in Guwahati, Assam. The two-day event is being organized by the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs. The meeting will bring together heads of anti-drug agencies and senior officials from BRICS member countries to strengthen cooperation against drug trafficking and substance abuse. A report.
5: The BRICS Head of Anti-Drug Agency meeting in Guwahati will focus on combating synthetic drugs and precursor diversion, strengthening intelligence sharing and operational coordination, and enhancing capacity building and institutional cooperation. Delegates will discuss emerging challenges such as new psychoactive substances, darknet-enabled trafficking, cryptocurrency-linked financial flows, and abuse use of precursor chemicals. India will also showcase its effort to combat drug abuse and trafficking, including the recently released vision document on Narcotic Control 2026-29. During the meeting, member countries will deliberate on strategies to address evolving drug-related threats and strengthening international cooperation. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
10: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. Earlier, the meeting was scheduled to take place at Maniram Chowani around 3 p.m., but now the venue has been changed and the meeting will be held at the premises of the Ram Temple. Our correspondent has the details.
6: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letter submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement by balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
10: The nation pays homage to Bharatiya Jan Sangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture in association with the West Bengal government will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the two-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. More from our correspondent.
12: Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata this afternoon to attend events of 125th birth anniversary celebrations of Shyama Prasad Mukherjee. He will head towards Eco Park in New Town. There, he will participate in the groundbreaking ceremony for the construction of a 125-foot statue of Shyama Prasad Mukherjee. Later in the afternoon, during the event at Mukherjee's ancestral residence in Bhavanipur, Amit Shah will pay tribute by garlanding his statue. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
10: Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, describing him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. In an article, the Prime Minister said Dr. Mukherjee's public life was defined by his unwavering commitment to the indivisibility of India. He said Dr. Mukherjee stood firm during partition to ensure that West Bengal remained an integral part of the country and later dedicated himself to the cause of Jammu and Kashmir. Mr. Modi said the revocation of Articles 370 and 35A in 2019 was the most fitting tribute to his martyrdom. The Prime Minister also noted Dr. Mukherjee's role as an independent India's first Minister for Industry and Supply, saying he laid the foundation of modern industrial India through initiatives such as the Damodar Valley Corporation and the Sindri Fertilizer Plant, while supporting handlooms, cottage industries and artisans. Incessant rain with gusty winds continue to lash Mumbai and coastal Maharashtra. A red alert has been issued for Raigarh district, where major rivers have crossed the danger level. Torrential rains have wreaked havoc in Raigarh and Ratnagiri districts. Building collapses have claimed many lives in Mumbai and Navi Mumbai. We have a report.
9: The IMD has issued an orange alert for Mumbai, Thane, Palghar, Ratnagiri and Sindhudurg for today, forecasting heavy rainfall accompanied by gusty winds. A red alert has been issued for Raigarh district, warning of extremely heavy rainfall. All government, municipal and private schools and colleges in all the coastal districts and Pune will remain closed today as a precautionary measure. Collapse of 2 to 3 houses in a 3-story kachcha, that is makeshift or unauthorized chawl in Mankurd area of Mumbai resulted in the death of a total of 6 people, including 5 children and 1 woman. Strong winds led to 142 incidents of trees or branches falling across Mumbai and claimed 2 lives. Heavy rains continued to wreak havoc in Thane and Palghar districts yesterday, claiming 2 lives and triggering multiple structural collapses. With Sangeeta Godbole's report, Komudi Parikh, Akashwani News, Delhi.
10: And in sports, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the 5-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup 2026 round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. The 34-year-old forward brought the curtain down on his international career moments after Brazil's hopes of a 6th World Cup title were ended. His retirement brings to an end one of the most celebrated international careers in Brazilian football. In cricket, Australia defeated England by 7 wickets to lift the ICC Women's T20 World Cup at Lord's in London last night. Chasing a target of 151 runs set by England, Australia scored 153 for 3 in 17.1 overs. Beth Mooney was the highest scorer for Australia with 64 runs. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. In a bilingual live phone-in program, Public Speak at 9:30 tonight, we will bring an insightful discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology with Gulshan Rai, Cyber Security Expert. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
13: Thank you, Anuja. All the dailies have covered Prime Minister Narendra Modi's tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary. Quoting the Prime Minister, the Tribune, under the headline, Mukherjee, a lamp that still burns bright, says, the one ideal that defined Shyama Prasad Mukherjee's public life above all else was the indivisibility of India. The pioneer, citing the PM's article, writes, Dr. Shyama Mukherjee stands out for his humanitarian efforts, especially during the famine-struck Bengal in 1943, and how he stood firm during the upheaval of partition to ensure that West Bengal remained an integral part of India. A top front-page headline in the Indian Express states, Armed forces seek larger retention of Agniveers after end of 4-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says childcare housework keeps 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, A Voice That Brought Beam Alive Falls Silent. Her legend lives forever. And with that, it's back to you, Anuja.
10: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon.

में चले पुरवैया लापता लेडीज फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

एनिमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल, स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम जरी हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षत कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहां पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। मतलब मेरे पिताजी और माताजी वहां काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूं। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तुम मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, हम 24 दिन में खत्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस जमाने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ।

हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूं, क्योंकि जिंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे, तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, जो गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असित सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊट पटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात्रि

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है, पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे। वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है, जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफकोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकेंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं। बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म

0: अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर,
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूं, देखता हूं, दोस्तों को लेके जाता हूं इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि
0: पड़ेगी
1: एक बार फिर से वो जनाना रोल आ
0: हाँ
1: रहा है।
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो
1: बिल्कुल
0: करो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो
0: करेक्ट
1: वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी
0: ओ
1: है।
0: यस ऑफ कोर्स। हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त
1: एटीज वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ ये बात जो है

0: बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
1: तो है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है, शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे।
0: हाँ, हाँ।
1: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में।
0: और बहुत खूंखार रोल था वो,
1: बहुत ही ज्यादा काला नाग।
0: हाँ।
1: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल।
0: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
1: नाग हूं मैं नाग, काला नाग सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट ये। बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था। और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग।
0: अरे गजब।
1: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
0: बाप रे।
1: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
0: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
1: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है।
0: सिर्फ सुना है,
1: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
0: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश।
1: ओ,
0: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है।
1: करेक्ट,
0: वहां
1: करेक्ट।
0: से वो पूरी यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ।
1: करेक्ट,
0: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था।
1: बहुत ही बहुत ही, और उस
0: बहुत
1: समय
0: ही डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
1: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था।
0: ऑफ कोर्स,
1: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे। राइट, सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके, ऐसा मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
0: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ बच्चन के सामने विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं। वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है,
1: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
0: अपना
1: है,
0: अपना फर्ज निभाओ,
1: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट, तो
0: बिल्कुल
1: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक। लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
0: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
0: ओहो, करेक्ट।
1: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
0: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
1: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे, ब्रश करके चाय ये उनकी क्या कहते हैं
0: जरूरत।
1: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे,

0: एक एक घूंट एक एक घूंट ऐसे करके, तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे, उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो, जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग-अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
1: ओके
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे,
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की।
0: अंपायर की। कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास, और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते
0: नहीं
1: थे?
0: बिल्कुल नहीं
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे,
1: सख्त मनाही।
0: इसलिए सख्त मनाई, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो 2-3 दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम 4-5 फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए,
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो
1: ओ हो।
0: उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, उसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है

0: पर कुछ बोल नहीं पा रही है
1: okay. फिर वो जवाब बाद में
0: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब पता नहीं क्या है. तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था. जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था. उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था राइट right? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था.
1: बिल्कुल वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी फैमिली चल रही थी.
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी. और उस समय गोविंदा शक्ति कपूर कादर खान इनकी जो ये एक वेव आई थी
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ. इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में. चंकी पांडे हो गोविंदा हो मिथुंदा हो कादर खान हो असरानी हो जॉनी भाई हो इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन.
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे
0: बहुत मजेदार मिलते थे. और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है आप बुरे होते हो और आपका एक एक ही ग्राफ होता है राइट कि हीरो आएगा आपको मारेगा खत्म राइट. पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता. कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है कभी कभी अच्छे काम भी करता है कभी कभी बुरे काम भी करता है. तो ये वैरायटी जो थी आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त और इसलिए उन्होंने किया वो इश्क किया उन्होंने आंखें की फिर
1: आंटी नंबर वन
0: आंटी नंबर वन कूली नंबर वन फिर ये हम है कमाल के ऐसी काफी सारी फिल्में हैं. और फिर अरुणा जी के साथ अरुणा ईरानी जी के साथ
1: तो
0: काम किया
1: बिंदु जी के साथ सो रहे हैं और वो जगाने आती है.
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं तो बहुत ही फनी है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्में दिखाऊं कैसे उसे है ना क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते. जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए बिकॉज सब लोग आजू बाजू अच्छा सदाशिव जी की पोती हो सदाशिव जी की पोती हो ये तो वो सुन ही रही थी. तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी. मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे तो बहुत मजा आता था. फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी
1: दिखाऊंगी
0: ये सारी फिल्में दिखाऊंगी.
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था
0: बहुत ही अलग
1: क्या लीग थी वो.
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो इंदर कुमार. एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है. ऊपर से आमिर और जूही इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है जो एक्टिंग की है मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया. मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी ओवर द टॉप
1: था.
0: नहीं थी वो सिचुएशनल कॉमेडी थी
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी. तो जो चाहिए वो करो. मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था.
1: अच्छा
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी लेकिन मैं गई थी. और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए. फिर वहां से आमिर का ये आता था सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं. फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था. तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी इंदु जी का डायरेक्शन भी था लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी. आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म. ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी
1: बिकॉज
0: जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है.
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज.
1: Hey!

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तुपुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकथनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस
0: फिल्म को
1: मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तुपुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, माला माल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
0: राइट।
1: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
0: बिल्कुल.
1: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
0: जी.
1: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
0: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं.
1: sure.
0: क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये भजन, जिसे लिखा महेंद्र दहलवी ने और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत इसमें आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में जावेद अख्तर का ये कलाम, कुलदीप सिंह का संगीत, फिल्म साथ साथ।

साथ साथ फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में आप सुन रहे थे उर्दू गजल मॉडर्न। इस एल्बम से ये गजल जिसे लिखा ताहिर फराज रामपुरी ने और बेनी का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सुखिंदर सिंह और अलका याग्निक के साथ साथियों की आवाजें बीवी नंबर वन फिल्म के इस गीत में सुखिंदर सिंह के बोल और उन्हीं का संगीत भी इस गीत में। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोल आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद का संगीत दीवाना एल्बम के इस गीत में और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन को ब्रेथलेस में।

0: दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर महादेवन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब सुनिए ये गीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

ये हंसी पल यू न खोना, दूर मुझसे अब तू न होना, फासले आजा मिटा दे लग जा गले।

0: गणेश हेगड़े की आवाज में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत, जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

ਹੋਇਆ ਤੰਦੂਰੀ।

दर्दी रब रब इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को। जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस दो मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरणदीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई और मलसिया वासुदेवन की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से 1 दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और आप समझ गए होंगे यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: मुकेश की आवाज में आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे इंद्रवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

0: झल
1: मैं क्या सोचती
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आप सुन रहे थे एमजी हशमत के बोल। रविंद्र जैन का संगीत तपस्या फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
4: हर तरफ अब

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और अब हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

मोहम्मद रफी की आवाज में ही रांझा फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अब हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों से।

मोहम्मद रफी, भूपिंदर मन्ना डे और तलत महमूद की आवाजों में हकीकत फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में समय हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीत से। आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत।

हस्ती जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, रोजाना हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में गीत शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो भी गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत शामिल होंगे। और आप अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहां पर आप को सारी पोस्ट मिल जाएंगी। और भी जो भी कार्यक्रम आते हैं विविध भारती की, उन सभी की पोस्ट भी आपको वहां मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहां मिल जाएगा झरोखा के अंतर्गत। तो इस तरह से आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और जो साथी फेसबुक पर ही हैं, जिनका अकाउंट है, वो फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो आज की इबारत है, चलते चलते इस जीवन में कई रास्ते खुलते जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खींचे जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चलते जाने में है, क्योंकि रुकना नहीं, चलना ही नियति है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा, वक्त जो ये गया हाथ से फिर कहां कोई इसे पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए, चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात हो गई इस सुरीले मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत, जिनसे शब्द आप चुन सकते हैं जिनसे आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत पढ़कर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की पंक्तियां याद आ गई। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वैसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जाता हूँ, लेकिन आज सुबह बाय कार सूरत से धोराजी की ओर चल पड़ा हूँ। चलते चलते मेरे नहीं सुमन जी के गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम ये जानना चाहते कि भाई चलना तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे गीतों में हमें समझ में आता ही है, लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना, यानी किसी बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने क्या किया है ऐसा प्यारा काम, किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है, या आपको किसने चलना सिखाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले गीत की ओर, बताना है किस फिल्म का गीत है।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफे आजमी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिख भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है कि उनके लिस्ट में तो ये गीत था ही, और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारे लिस्ट पहले गीत में ही मिल गई है। आगे जरूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट में से शामिल होते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज का गद्यांश जीवन में चलते रहने की बात लेकर आया है। जीवन का वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है। चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या दुख महसूस ना करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं। चलते रहने की इस कला में धैर्य, आशा और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा संबल है। आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। वहीं हमारे एक और साथी ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती भारत है। संस्कृत में चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो। श्लोक की वास्तविकता है बहता पानी रमता योगी, ठहर जाए तो विकार अवश्यंभावी है। जीवन सफर में चलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती है और अंततः लक्ष्य हासिल होता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये कारवां यूं ही चलता रहा, जहां कुछ लोग दूर छूट जाते हैं और कुछ दिल के पास आ जाते हैं। कदमों की खूबसूरती भी ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारी कौर साथी का कहना है चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। इसे कर्मयोग, काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका असर बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज में गीत, कौन से फिल्म से।

मोहम्मद रफी की आवाज में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और हमारे साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ कीजिएगा गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है, सफलता हमेशा इस बात

पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारी एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। उसने कहा, दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होंगी तय चलते चलते, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहां रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत इन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया, सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नजारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूं। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूं। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वही हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक 3 पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे एक साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की 3 पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे एक साथी का कहना है, और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है, जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है, तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरत है, खूबसूरती से ज्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पांव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

0: गावाची धावपट्टी आज सकाळी सुमारे तासभर बंद ठेवावी लागली. मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्येही जोरदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी जनजीवन प्रभावित झालं आहे. गुजरात, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये आज अतिशय जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे. पूर्व राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल इथं जोरदार ते मध्यम पाऊस पडेल असा अंदाज आहे. विम्बल्डन टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेच्या महिला एकेरीत नाओमी ओसाका हिनं अग्रमानांकित अरिना सबालेंका हिला पराभवाचा धक्का दिला. नाओमीनं अरिनावर 6-2, 7-6 अशा दोन सेट्समध्ये मात करून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. याशिवाय कोको गॉफ, जेसिका पेगुला आणि कॅरोलिना मुकोवा यांनीही उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. पुरुष एकेरीत नोवाक जोकोविचने रोमान सॅफ्युलिन याच्यावर 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 अशी मात करून उपांत्यपूर्व फेरीतलं स्थान निश्चित केलं. या विजयासोबतच विम्बल्डनच्या मैदानावर सर्वाधिक 106 सामने जिंकणारा पुरुष टेनिसपटू हा विक्रम त्याने आपल्या नावावर केला. अग्रमानांकित यानिक सिन्नरनं शिंतारो मोचीसुकी याच्यावर सहज विजय मिळवला, तर फिलिक्स ऑझर अलियासेम यानं अलेझांड्रो डेव्हिडोविच फोकिना याला 5 सेट्सच्या थरारक सामन्यात हरवून पुढच्या फेरीत प्रवेश केला. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड दौऱ्यावर रवाना. सहकार क्षेत्राला 1 शतक पुढे नेण्याचं कार्य सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे शक्य झाल्याचं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांचं प्रतिपादन. देशाच्या विविध भागात दमदार पाऊस. महाराष्ट्रात राजधानी मुंबईसह अनेक ठिकाणी जनजीवन प्रभावित. आणि विम्बल्डन टेनिस महिला एकेरीत नाओमी ओसाकाकडून अग्रमानांकित अरिना सबालेंका हिला पराभवाचा धक्का. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: अपने पैरों को फिटाए ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए. जो चलने में दिक्कत ना हो तो ऊंचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है. पर लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनकी उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूं, सारी बात समझाता हूं और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूं कि आपके बिना मैं अधूरा हूं. वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं. हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं. भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं. कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है. भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है. बहुत ज्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं. हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी. बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे. हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है. राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है. कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं. एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूं. खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहां कट जाता है पता नहीं चलता. तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं. ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं. लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है. तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि गीत सुनवा देते हैं. बताइए किसकी आवाज में

घर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वहीं हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चौमुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊंचा है कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है।

होती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कहने की उनकी बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कहने की मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बेक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाया और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया? हमारे चलते बोलते रहने की तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं। इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए हैं। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

त्रिवेणी श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के बिना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों

0: से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है अपार ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे से निखरते हैं। इनमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। बिना किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना, मिलाना, आदर, सम्मान का होना बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, धैर्य भी हो आपस में।
1: तेरा मुझे

दोस्तों, इन रिश्तों में प्रेम की धारा बहती है। रहीम जी ने भी कहा है कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परिचाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत जरूरी है, इनमें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, बरसों तक ये रिश्ते नाते फलते फूलते रहा करते थे, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो

जाते थे, पता ही नहीं चलता था। आज एकल परिवार हो गए हैं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते, बुआ चाचा, भाई बहन, मौसी मामा, सब खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की रौनक त्योहार, उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लगती है, आज इनमें भी कमी आ गई है, या सब अपने आप में इतने व्यस्त

शामिल होना परिवार को ताकत दे जाता था कि एक आवाज पर एक तार टेलीग्राम चिट्ठी मिलते सब आ जाएंगे। आज इनमें भी कमी आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं जरूरत से बनाने लगे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले। वक्त के बदलते दौर में हमें मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लगाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावरे ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
6: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य गार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदिनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: चराए, उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
1: तमसखोर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
2: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
0: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
5: बिल्कुल।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा,
1: भाई।
0: बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहां पे खर्चा करना है कहां पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी टेंशन ये सब चीजें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं। होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल लेना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें।
1: हाँ, इस तरह से
0: इस
1: भी
0: तरह
1: कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांटकर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी, तो वैसे भी कर सकते।

0: रहे हैं, तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है। और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम कटौती करते हैं। और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को।
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं।
1: हटा
0: कि
1: सकते
0: ये हमारे
1: हैं,
0: लिए आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे, या अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड के भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत
1: हो
0: जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे, तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयां, इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है?
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में 3 मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकटमोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ

0: मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया, क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था, पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस राशन पानी दवा डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपये एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
1: है, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने फलने फूलने तक का ध्यान रखा जाए, पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहां पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीजें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए। और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहां पर, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहां पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल। सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
1: कोई भी पढ़ सकते हैं,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे ए,

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहां पर उन्हीं पत्तों पर वहां की सब्जियां साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियां और जंगली पत्तों पर बैठकर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहां जाके देख सकते हैं, वहां पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सच सेहत नामक कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल
2: इम्बैलेंस? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
2: और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो

0: जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है।
1: जी, तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स
0: हाँ,
1: नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या
0: हाँ,
1: हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण ही बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी,
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है।
1: जी, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम, एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
1: प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: 2000 तक कैलोरीज, और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे, तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे, हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
1: जी
0: गया,
1: जी
0: विटामिन
1: जी
0: डी ये
1: और
0: बोलते हैं,
1: विटामिन डी
0: हाँ,
1: धूप से
0: सन,
1: ही मिलता है,
0: हाँ,
1: और
0: सनलाइट, हाँ,
1: आजकल धूप की बहुत कमी
0: बहुत
1: है।
0: कमी है,
1: लोग एयर कंडीशन
0: हाँ,
1: कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
0: एसी,
1: नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है।
0: हाँ
1: धूप का ही एक गाना है,
0: हाँ
1: एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से। आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
0: हाँ
1: और गाना।
0: नहीं, जरूर, बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए, समोसे के ट्रांसपोर्ट के लिए मुश्किल है,
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना?
1: फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी
1: को, हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर खाए।
1: हाँ, फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है।
1: हाँ, क्रॉनिक, तो
0: उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ,
0: क्या
1: क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: बीमारियां होती हैं, जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर, टीनेज पर, 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, मासिक धर्म। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप।
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है।
0: जल्दी आ
1: हाँ,
0: जाता
1: जल्दी
0: पीरियड।
1: आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गया। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने की चीज़
0: तो
1: तो
0: क्या वजह है
1: क्यों,
0: इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
0: ओ
1: हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने, ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता
1: हाँ,
0: है, ये तो,
1: गर्भाशय में
0: हाँ,
1: सिस्ट
0: तो
1: बन जाता है,
0: ये क्या
1: तो
0: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय रहता गर्भाशय है गर्भाशय के साइड में दो गर्भनली काय रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
0: जी
1: ट्वेंटी एट थर्टी तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, ऐसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या दवाओं
1: वो
0: से ठीक
1: सिस्ट
0: होता
1: तो
0: है?
1: नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है,
0: जी,
1: होते हैं।
0: तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो
0: सुरमई अखियों में नन्ना
1: नन्ना
0: मुन्ना
1: मुन्ना
0: एक
1: सहित
0: सपना दे
1: सपना।
0: जा रहा। सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है और
0: लैब से भी डोनेट
1: डोनर करवा लेते हैं।
0: जी।

0: हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत
0: कम
1: होती
0: हो जाती है स्केंट में,
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: तो इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या यूटेरस खतरा होता है?
0: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहां तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
1: जी।
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका
1: जी,
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
1: यूरिन के रास्ते से यूरिन पानी आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
1: जी। हाँ तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी,
1: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जिसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
1: मेमोग्राफी कर,
0: तो
1: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एपेनेसी, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है,
1: होते हैं।
0: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता
1: उसका
0: है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसे, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है, एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए, अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पे ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़।

पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर

0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर
4: बनारे कार्यक्रमांची आकाशवाणीचे सिंधुदुर्ग नगरी केंद्र आहे, एफ एम बँड 103.6 मेगाहर्ट्झवर आणि न्यूज ऑन ए आय आर या मोबाईल ॲपवर। आता प्रसारित करत आहोत मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। सुरुवातीला ऐकूया अनुराधा बडवाल आणि सुरेश वाडकर यांच्या आवाजात सुधीर मोगे यांचं गीत, संगीतकार अरुण पौडवाल, चित्रपट माझं घर माझा संसार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी से सिंधुदुर्ग नगरी केंद्र है। FM बैंड 103.6 MHz वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर श्रोते आमच्या प्रसारण सभेत मी अंगनेल आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। सायंकाळची 6:05 झाले आहेत. आता आपण ऐकूया सुगम संगीताचा कार्यक्रम. सुरुवातीला ऐकूया मिलिंद इंगळे यांच्या आवाजात सौमित्र यांचं गीत.

0: याचबरोबर भावधारा कार्यक्रम संपला. यानंतर 10 वाजेपर्यंतचे कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून प्रक्षेपित केले जातील, ते आम्ही सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी. कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा. राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया. कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया. महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित. कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है. एक रिपोर्ट.
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है. श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी. आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे. जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती.
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन

0: शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन

0: संसाधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई

0: में तीन टी20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना मेरे सनम, इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है लाट साहेब फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपके लिए इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का गाना। आवाज मोहम्मद रफी की है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। राजा मेहंदी अली खां के बोल, संगीतकार ओपी नैयर।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम लाल पत्थर।

0: लाल पत्थर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। अब मेरे पिताजी और माताजी वहां काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रहे थे। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना असीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो असीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस जमाने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि जिंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादामुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई, मनोखी रात।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री